फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

में मुख वो

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 228। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। सुनिए श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वॉयलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनिएगा। सात बजे से सुनिए भूली बिसरी गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है रही प्यार के। त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12 हिंदी समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुनिए सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 से सदाबहार नगमे। 3 सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनिएगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुतकर्ता सुपैर खान। शाम 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वॉयलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 से। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 सुनिए नाटिका चांद की किरण। लेखन प्रेम लता जैन का। निर्देशन जनार्दन राय का। रात सुनिएगा चित्रलोक कार्यक्रम। 9 सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर। रात 10 छाया गीत। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र नेगी। आलेख और स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 228।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्या वासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं पंडित एस एल कंडारा जी का। पंडित एस एल कंडारा जी को इस अंक से तबले पर संगति दे रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी, जो जाने माने तबला नवाज पंडित मदन मिश्र जी के सुपुत्र हैं और शिष्य हैं। संतोष जी, आपका भी विविध भारती के स्टूडियोज में बहुत स्वागत है। पंडित जी, वायोलिन की विहंगमता के बारे में हमने अब तक चर्चा की
2: जी।
1: किस तरह से भारत में उसका आगमन हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत ने कैसे उसे अपनाया
2: जी।
1: और कौन कौन महान कलाकार हुए हैं इस वाद्य को लेकर के, और फिल्मों में किस तरह से वायोलिन का उपयोग हुआ है, ये सारी जानकारी पाने के बाद अब हमारे कान आतुर हैं आपका वायोलिन वादन सुनने के लिए। तो राग शंकरा से हम शुरुआत करते हैं
2: जी।
1: राग शंकरा के बारे में, उसके चलन के बारे में
2: जी
1: हमें बताइए।
2: राग शंकरा देखिए बहुत प्राचीन रागों में से एक राग है
1: जी,
2: और शास्त्रों में इस राग का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन जो पंडित लोग हैं
1: जी
2: या उस्ताद लोग हैं इस राग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर जो जिन्होंने इसको सीखा है। हमारे गुरुजी ने मुझे जब राग शंकरा के बारे में डिटेल बताया
1: जी,
2: तो मुझे लगा कि उनका ज्ञान अगर नहीं मिलता तो ये राग से मैं वंचित रहता था, तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी
1: जी।
2: मैं शब्दों के बजाय कुछ बजा के बताऊं तो शायद ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, तो मैं कुछ कोशिश करता हूं थोड़ी से। देखिए राग शंकरा जो है उसमें आरोह में षड्ज के बाद गंधार
1: जी,
2: फिर पंचम, फिर निखात धैवत और तार सप्तक का साज, यानि गंधार पंचम धैवत और निखात और सा, यानी पांच ओडव जाति हो गई इसकी, पांच सुर लगते हैं। और अवरोह में सा नि ध पा गापा गारे सा, मध्यम नहीं लगता है, केवल मध्यम अवॉइड होता अवरोह में। अब इस क्लिष्टता को केवल बरतने से ही मालूम पड़ सकता है कि वो कैसे राग शंकरा प्रकट होता है
1: जी,
2: तो ये मैं कोशिश करता हूँ आपको बजा के बताने की।

सागा पानी सा। अब रिखब भी इसमें लगता है, पर वो वक्र गति से लगता है, धेवत भी लगता है, वो भी वक्र तरीके से लगता है।

अब ये जो सा ग प षड्ज गंधार और पंचम, ये सा प ग प रे ग रे ऋषभ जो लग रहा वो वक्र गति से लग रहा, खड़ा नहीं लग रहा। खड़ा लगेगा तो शास्त्रीय रूप से अमान्य होगा वो।

0: क्या बात है, बहुत खूब पंडित जी। एक ताल में निबद्ध ये बंदिश जो आपने सुनवाई, लगता है इसकी शास्त्रीयता को, इस वातावरण की शास्त्रीयता को ऐसे ही रखा जाए और एक भजन अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र की स्वरों में है।
1: बहुत अच्छा है।

0: राग शंकरा पर आधारित ये भजन अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की आवाजों में। श्रोताओं, इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। आज्ञा दीजिए।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत के 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
4: Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building. Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity. He stressed that empowering the poor and middle class remained a key priority, citing a affordable housing initiatives, tax reforms, healthcare schemes, and improved urban infrastructure. Taking swift action after the tragic fire incident in Lucknow, which claimed the lives of 15 students, the police registered a case against 6 individuals and arrested 4 of them last night.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था वाला देश बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश, स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज से शुरू होगा विशेष पखवाड़ा, प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपने हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।

0: देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले हजार वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को जन सामान्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल मंत्रालय में योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विकास समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज देवास जिले के कन्नौज तहसील के डोकाकुई गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान डॉ. मुरुगन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। इस अवसर पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, संतान, दत्तक नियम जैसे विभिन्न विषयों पर राय दी। इस उच्च स्तरीय समिति में सदस्य और उत्तराखंड के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और डॉक्टर शोभा वेथनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर, समाजसेवी बुद्धपाल सिंह ने सुझाव रखे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 का समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचार पूर्ण उत्पादों, डिजाइन हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से वो संवाद करेंगे। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई गोल्डन आवर हीरो अभिनव पहल ने जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इस अभियान के प्रभाव से जनवरी से मई 2026 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 33%, मृत्युदर में 23% और तथा गंभीर घायलों की संख्या में 52% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद का पहला आधा घंटा गोल्डन आवर घायल व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबों, पेट्रोल पंप संचालकों, स्थानीय ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उज्जैन में अगले वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सागर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे बैच का कल शुभारंभ किया गया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। 2024 में चीन ने खुलनपुर में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला है। 2024 में हुए मुकाबले में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी। प्रदेश में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर मंडला दमोह उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वह ग्वालियर श्योपुर मुरैना भिंड दतिया शहडोल अनूपपुर डिंडौरी बालाघाट सिवनी भोपाल सीहोर हरदा देवास खंडवा बुरहानपुर खरगोन इंदौर धार बड़वानी अलीराजपुर और झाबुआ जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। इंदौर जिले में रबी मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली और एक जिला एक उत्पाद में चयनित इंदौर के मालवी आलू को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल गई है। खंडवा में आगामी मुहर्रम पर्व के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है। तंबाकू नियंत्रण और तंबाकू मुक्त युवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आगरमालवा में कल कार्यशाला हुई जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा हुई। झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से बामनिया क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। कटनी में राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं जिसमें कटनी के 17,000 नागरिकों ने ऑनलाइन लिखित रूप से अपने सुझाव शासन को प्रेषित किए। निंडौरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल संचय और जन भागीदारी के माध्यम से किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: करना है।
1: तिकड़मबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शमशाद बेगम की आवाज थी। बी एन बाली ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन की धुन थी। लीजिए अब सुनिए उमा देवी की स्वर में दर्द फिल्म का गीत। गीतकार शकील बतायनी, संगीतकार नौशाद।

रुस्तम सोहराब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुरैया की आवाज़ में। कमर जलालाबादी की रचना थी, सज्जाद हुसैन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

मनपसंद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, अमित खन्ना के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था।

0: रिक्शा वाला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथी की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और आर डी बर्मन में धुन बनाई थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी।

0: दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
4: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
3: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
4: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
3: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
4: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
3: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में पूर्णिमा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम में चलिए लेते हैं बहुत छोटा सा अंतराल।

हम है रही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। ये गीत है फिल्म फरिश्ता या कातिल का।

0: फरिश्ता या कातिल। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे। अनजान के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कौन लाया?
4: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
5: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
4: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपकी कसम, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे

0: नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट

0: हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम

0: साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओफू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने

0: इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। मिस्टर

0: reports the Pioneer. An engineer from Rajasthan used artificial intelligence to hack into the Rajasthan Public Service Commission portal and delete his competition for a government job, writes an Indian Express, highlighting the misuse of AI platforms. And finally, to enhance ease of commuting and strengthen availability of amenities, the NHAI is developing vehicle repair and puncture service facilities along national highways and expressways, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं
3: उजाली उनकी यादों की इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार

0: बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।
1: एक जानी

श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ों में गुरु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे A.R. रहमान। लीजिए अब सुनिए धड़क 2 फिल्म का गीत जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाज़ों में। संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ऊंचाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जावेद अली दीपाली सेठ मधुवंती बागची की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। यह है सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें। मनोज मुंतशिर और साथी का लिखा हुआ ये गीत है। संगीत रोचक कोहली का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
4: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: बॉर्डर टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आवाजें थीं दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन की। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन और परंपरा टंडन ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

परम सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य की। अमिताभ भट्टाचार्य ने बोल लिखे थे।

आज है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य लोक सेवाओं के महत्व को बढ़ावा देना और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान करना है। ये दिन हमें सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। आइए जन सेवा के इस पावन भावना को प्रणाम करें और एक बेहतर समाज बनाने का संकल्प लिया जाए।

सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ों में राजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और साथी संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए मालिनी अवस्थी की आवाज़ में हक फिल्म का ये गीत।

हक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मालिनी अवस्थी और साथियों की, कौशल मुनीर ने बोल लिखे थे और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए लेते हैं एक और ब्रेक।

0: फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता राज बब्बर जी का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सुनिएगा। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर, सुनना ना भूलिएगा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अपना है ये। आई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी, इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। दोस्तों 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन करोड़ों महिलाओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना है जो पति के निधन के बाद जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन महिलाओं के साहस, धैर्य और संघर्ष को नमन करने का दिन है जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। 2026 की थीम है विधवाओं के लिए न्याय, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जय बरुआ की आवाजें थी। जावेद अख्तर ने बोल लिखे थे और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी इसी गीत के। साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। आप स्वस्थ, सकुशल और सानंद रहिए, इसी कामना के साथ आज के चित्रलोक कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। सविता सिंह को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही।

0: जब तू।
1: आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पाराशर, मदन पुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

कह सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होके बी.आर. चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो यह फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता

राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया।

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलके। जन्म

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद एनएसडी से थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। एनएसडी करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी की रिपर्टरी का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपर्टरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सुहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहाँ भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज़ बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है जिनमें हम पांच, कलयुग, राज और पूनम है।

प्रेम गीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा चमकते रहेंगे।

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालूठिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कुनो नेशनल उद्यान के चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया। इस अवसर पर लगाई गई चीता प्रदर्शनी के दौरान राष्ट्रपति ने अवगत कराया कि 49 चीते कुनो में मौजूद हैं। 3 चीते गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर भेजे गए हैं। उन्हें बोत्सवाना से लाए गए चीतों की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा अपनी बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीते रिसीव किए गए थे, जिन्हें कुनो लाया गया है। चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कुनो प्रवास के दौरान चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति मुर्मू को चीता मित्रों ने बताया कि कुनो नेशनल पार्क से लगे सभी गांवों में चीता मित्र मौजूद हैं, जिनके द्वारा चीतों की सुरक्षा के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुनो नेशनल पार्क में चीतों की पुनर्स्थापना योजना को लगभग 3.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। नेशनल पार्क में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को लाया गया है। जिले में साल 1 जून से अभी तक कुल 8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक 336.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वर्षा 822 मिलीमीटर है। जिला प्रशासन द्वारा बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले भर के पिकनिक स्थलों पर लोगों को पानी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत SDRF के जवानों को सभी पिकनिक स्थलों पर तैनात किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान इस साल सभी शासकीय भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य किया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर पालिका के शिवपुरी रोड स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला उपस्थित थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गरिमामय उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सागर जिले के देवरी में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम के माध्यम से 37वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1835 करोड़ राशि का अंतरण किया गया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने कहा है कि अनेकता में एकता भारत की पहचान है। किसी भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के लिए जन समर्थन अनिवार्य है। समिति प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर नागरिकों से संवाद कर रही है। प्राप्त सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण सुझाव आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराए जा सकते हैं। कानूनों में सुधार पर विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। शिवपुर जिले के विजयपुर में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन शिवपुर द्वारा की गई पहल पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की टीम शिवपुर जिले के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंची, जहां विभिन्न पर्यटन स्थलों का अवलोकन कर पर्यटन गतिविधियों की संभावनाएं तलाशी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, श्योपुर जिले की चिट्ठी अभी आपने सुनी। आलेख था अश्विनी बालूठिया का और वचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
2: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
1: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
2: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
1: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। बट मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
2: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
1: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
2: अच्छा।
1: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
2: ये जो देश है मेरा।
1: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
2: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहां पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट, तो मैंने 1 साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें। तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन

0: ही देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक एक साल पहले हुई थी और कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज़्यादा दवाई हम यूज़ करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वे वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, तो बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर, स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पर आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, अब 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, हमें ये, मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर, फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई जाते
1: हैं। जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को?
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ।
1: जी जी, जी
0: लाइक थोड़ी बीट सोनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना।
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है।
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है। सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना ज़रूरी है कि बस भागना ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोरायसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: हाँ, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन, चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादा कर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं, ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा मुझे, किसी ने लिखा मेरी बहन को है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो, अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी, हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली. इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी.
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है. किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं. उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा. वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा. कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है. तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है.
0: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो. सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए. खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट ताकि खाना नीचे चले जाए. दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ. जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है. तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ. जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो. That should help your symptoms. अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ, फिर हम दवाई शुरू करते हैं.
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं. बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए. दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स
0: जी,
1: को
0: जी.
1: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है. मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है.
0: जी, जी.
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स. अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है. तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है.
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है. पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है. इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते. अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं. अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं.
0: जी.
1: बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम. बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं. जैसे IBS बोला मैंने पहले,
0: जी, जी, जी.
1: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया. मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं. जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो.
0: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
1: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है. तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं. अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है। तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
0: दोनों एक दूसरे के पूरक है और वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का एक गाना है, छैया छैया,
0: चल छैया छैया, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी जी
1: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत ना डाल लें, ये गड़बड़
1: करेक्ट,
0: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: हाँ। अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम
0: जी
1: क्या है।
0: जी
1: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
0: जी
1: डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला गीत। आवाज नरेंद्र चंचल की थी, फिल्म का नाम था बॉबी। इस गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का भजन। इसे संगीत में ढाला है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और रचना संत मीराबाई की थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं एक शास्त्रीय रचना। आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये कजरी।

0: बेगम अख्तर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गजरी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राडी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी बाबू गव्वाल की आवाज में ये गव्वाली। इसे लिखा है सबा अफगानी ने।
4: ये हुस्न वाले भी कैसा कमाल।

0: जैनी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए

सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में आमिर खुसरो की ये रचना।
1: शिकायतें कभी न की लबों पे सांस।
0: और ये आवाज है विशाल मिश्रा की, आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारू मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

से मिनट समाज होने की खसूरत तुम्हें मैं पूजूंगी, घर मोतीरारो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी।

0: केसरिया बालम आहुनी पधारू मारे देश। मेहदी हसन की आवाज में अभी आपने ये मांड गायकी सुनी और इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: रंग तरंग

0: सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है निकाह। आवाजें महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी आपने फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत। फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

रविंद्र जैन का संगीत साहिर लुधियानवी के बोल हैं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ें फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: महेंद्र कपूर की आवाज, फिल्म का नाम आज की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: वाह वाह प्रभात वाह, बहुत
1: अरे भाई तालियां उनके लिए,
0: मजा आ गया, कमाल कर दिया, थैंक यू।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए निदा फाजली की रचना, मनहर उदास की आवाज, उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तू ऐसी ना थी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं दोस्तों, आपके शहर में बारिश हुई या नहीं, या अभी भी आप धूप में बहुत परेशान हैं? बताइए आपके शहर में चिलचिलाती धूप है या फिर हल्की फुल्की बूंदे? लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हल्की फुल्की बारिश है और साथ में है प्यारी सी हमारी छतरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छतरी केवल धूप या बारिश से बचने का साधन नहीं होती है ना, बल्कि ये धैर्य, सुरक्षा और दूरदर्शिता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों, सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे छतरी बारिश में या चिलचिलाती धूप में खुद उस धूप को सहती है, बारिश को सहती है, तूफानों को सहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ये सफर हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं ना? अरे बताइए मेरे साथ है भी कि नहीं? देखिए ना, मुझे अकेले इस सुरीले सफर में निकलने से डर लगेगा, आप अगर मेरे साथ हैं तो ये सफर यूं ही आसान हो जाएगा जैसे हर बार होता है। तो बताइए, लिखिए फटाफट कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, है ना? और हाँ, अपनी छतरी लेना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं बारिश हो, कहीं चिलचिलाती धूप हो, कहीं बहुत बुरी गर्मी हो, तो हम परेशान न हो जाएं और ये सफर सुरीला ही बना रहे। इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्यधारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है। और बहुत से गीतों में बारिश होते समय छतरियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जहां बारिश नहीं थी लेकिन नायक और नायिका के बीच छतरी थी। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं छतरियों के नाम, आपके नाम, इस गीत के साथ।

0: दोना
1: हर इंतजार आएगा वो दिन बड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

जी, तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को। जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है। छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदें और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे

नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों को हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज की रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दूं, ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ओलाकुड़ा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाती से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाती का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का यह रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे कि छतरी से जुड़ी कोई बातें। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे, ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं कि वहां बारिश ही हो रही हो लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियां छतरियां लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहां छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुनाई नहीं। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छतरी प्यार हुआ इकरार हुआ वाली गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छतरी धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपकी कुछ गीत हमारी गीतों से हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माए दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं। यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं। छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, एसडी बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना? शामिल है ना?

जी, टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप, कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं। आप बताइए ना, अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई।

इधर गोंदिया में बेटी के यहाँ 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई हैं, देखते हैं हमारे शहर में कब कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं, और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है, और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है, क्या बात है। हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाई हैं आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है 4 लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि बे आज कुछ ऐसे गीत है जहाँ इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपके बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारें बरस रही हों और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हों तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नजदीकी एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है, जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रहली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है, बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए, लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान हैं तो सुरीले सफर में निकल जाइए ना हमारे साथ, हम तो आपसे पूछ ही रहे कि सुरीले सफर में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ, छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि बारिश के गाने हैं, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहां पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियां बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा है आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सके। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे एक श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा ही कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहाँ सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए, तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफिन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुंचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था, तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है, और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि, लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार MP में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी कोई ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये गाना देवानंद और आशा पारिक के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात 2 घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ की आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मजा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी। बहुत सुंदर। वहीं एक लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गायक गुलजार के लिखे गीत से। संगीत खयाम का है और फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

और अब पेश है कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल है। शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास

ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत को बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी गई, जो पहले 6,941 करोड़ रुपए थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10,00,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में जरूरी तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों की रक्षा पर चर्चा हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 जुलाई की रात तक लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया में चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया और पंजीयन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज जबलपुर, मंडा, दमोह और उमरिया जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर ने जिला पोषण समिति की बैठक में गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीयन करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों में अवैध गैसकेट और अनफिट वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और शिवपुरी में मोहर्रम पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सद्भावना समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुरमुस जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल

0: चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से Nafix.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
5: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
6: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
5: They all constitute an important threats for us.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
8: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ली न दबा छुपने वाले सामने आ छुप छुप के मेरा जी न जला सूरज से किरण बादल से पवन सब तलक छुपेगी ये तो बता छुप

0: तो बता, छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास के बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत SN त्रिपाठी का है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

चुपके चुपके रुकते

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी है और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: की सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, कि हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए हैं। तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत। हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है जी, वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती, लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा, काली पलक पिया तोरी
1: वाला। बिल्कुल, और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। हाँ, वो लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं।

0: जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माय फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपके वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपके चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
0: जी बिल्कुल, और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशनभोगी घर बैठे अपना डिजिटल

0: और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जो जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
1: जी
0: तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल,
0: और
1: अगर इनकी जानकारी है और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके ज़रिए बहुत ऐसी आप चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे
0: बिल्कुल।
1: तरीके
0: और
1: से।
0: आरती देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए, जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के ज़रिए या फिर किसी ऐप के ज़रिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर से ऐसे सीनियर सिटीजन्स को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है इस चीज़ के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें, तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फ़ोन भी चल गए हैं
0: बिल्कुल
1: जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजी, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने
0: जी
1: काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती। नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना
1: बचाव
0: हो,
1: में कर रहे,
0: हाँ
1: खुद ही
0: बिल्कुल,
1: फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घुसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: जी, और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
0: जी
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है।
0: जी
1: अंग्रेजी में इसे ऐड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत
0: जी
1: अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है,
0: बिल्कुल
1: और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
0: बिल्कुल,
1: काम
0: पड़ोसी
1: करता
0: हो
1: है।
0: चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: बिल्कुल, और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो
0: बिल्कुल
1: जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो
0: बिल्कुल
1: बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर
0: बिल्कुल,
1: रहे हो, है ना।
0: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो
1: बिल्कुल,
0: अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
2: अगर

0: तो देखो भाई इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए हाँ. कि भाई आग में घी डालने वाली बात
1: तो क्या कह रहे हैं श्वेता
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है. इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं. अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है. आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं जो परिवार समाज और देश सभी के लिए घातक होता है. बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना.
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज़्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो चाहे वो लोगों के बीच हो घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए. क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में 1 2 3 4 चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है.
0: बिल्कुल. और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आइए लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना. ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं तो कह सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं. और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज़्यादा है.
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज़ को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं. और वो जो मनमुटाव है, जो मनभेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं.
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित रखे,
1: समझाने जी करें. ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे. तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं.
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का.

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल
1: है
0: हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली।
1: जी
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाँ तो मंजरी अब क्या करें,
1: अब बताओ तुम क्या करते हैं।
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहते हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए

0: सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी एआई तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लॉ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया एआई के लिए, जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी

0: बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहां पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद इरशाद इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का जमाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं।
1: जी,
0: मैं
1: जी
0: सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने जी के लिए।
1: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: तो ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ यह था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ,
0: बात तो नहीं पता थी
1: कभी कभी
0: आपको।
1: शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
0: क्या बात
1: हैं।
0: है बहुत बढ़िया
1: तो हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
0: जी,
1: किताब पढ़ते हैं,
0: बहुत पढ़ते
1: नावेल और
0: हैं जी।
1: कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
0: जी
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
0: जी
1: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
0: थप्पड़
1: 80 तक,
0: और भीड़
1: भीड़
0: बिल्कुल
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल 15
1: आर्टिकल
0: बिल्कुल अलग है।
1: फिफ्टीन, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं
0: जी
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थीं। और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था,
0: जी,
1: तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: और
1: वो
0: सुंदर फिल्मांकन किया उन्होंने
1: हाँ,
0: भी।
1: बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है।
0: जी
1: लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक
0: जी
1: है,
0: जी
1: वो भी मेरी खुशनसीबी
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती
1: है।
0: हूँ
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले,
0: पहले
1: जो
0: वाले
1: पहला
0: नहीं।
1: वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त
1: तो
0: आए।
1: हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने
0: जी
1: वाले
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं,
0: जी
1: कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कट कटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
0: जी,
1: है
0: जी,
1: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
0: नंबर पर वही लिखा हुआ।
1: हाँ
0: व्हाट्सएप नंबर।
1: हाँ, तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
0: जी, जी, जी
1: है ना, और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
0: जी,
1: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
0: उसमें आपने गाना लिखा है।
1: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी। तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
0: ये फिल्म का नाम एक बार
1: जिद
0: फिल्म,
1: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
0: जी, जी।
1: तो मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीजे इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
0: क्या बात है।
1: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकू तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझ में, तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकू तुझ में।
1: जी, क्या बात।
0: तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया है, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा

0: ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम्बीर उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह
0: वाह, ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी।
0: ठीक है, तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो, मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती

मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती

0: फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगल

0: को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हां, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन
1: रोज बार तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है हां चल कर चल अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे अरे चल ना जल्दी कर
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।

साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसंती, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी।
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है? क्या करें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? हाँ, तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ,
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है? हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो
3: चलो
1: चलो,
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
0: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं

0: की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर से सावधान
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का। ये आकाश

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
5: भारती।
6: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल, शाम के 7:10 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवाड़ को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बोले, धारा 370 हटाकर साकार हुआ एक विधान का सपना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल रहा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के समाजसेवी मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। वहीं प्रदेश के बुंदेली मार्शल आर्ट के जनक भगवान दास रायकवाड़ को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि समाज सेवा एवं खेल जगत में इनके उल्लेखनीय योगदान ने न केवल मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस 2024 बैच के 183 अधिकारी प्रशिक्षुओं से संवाद किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने युवा अधिकारियों को नागरिक देवो भव का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे लाखों लोगों की आकांक्षाएं और समस्याएं जुड़ी होती हैं, इसलिए शासन को संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे।
1: सुजालपुर में लॉ कॉलेज के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना तथा उसके लिए पदों की स्वीकृति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में अगले 3 वर्षों में 315 स्कूलों को हाईस्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
0: इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम बारिश हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है दो

आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज

चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें 106 सदस्यों को शामिल किया गया है और 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को जगह मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक इस वर्ष परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। भोपाल के आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में आज 5 दिवसीय आदिरंग शिल्पकार महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर शिल्पकारों से संवाद किया। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 140 से अधिक जनजातीय शिल्पकारों ने अपनी पारंपरिक कला और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कृष्ण गौर ने आज मंत्रालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुविधा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। इस राउंड में प्रदेश के 1,29,265 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है, जिनमें 94,703 स्नातक और 34,562 स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से 30 जून तक प्रवेश शुल्क जमा करने का आग्रह किया है। भोपाल में अवैध कफ सिरप निर्माण और सप्लाई नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा उर्फ सलमान को एसटीएफ ने तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार आरोपी वहां पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसे तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर पकड़ा गया। भोपाल लाकर विशेष न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मालिक की अदालत में पेश किए जाने पर उसे 27 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। अब बात करते हैं मौसम की। मानसून की रफ्तार धीमी होने से प्रदेश में सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि आज बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम और धार जिले में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र में खरीफ 2026 वर्ष के तहत सोयाबीन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सागर की पुलिस प्रशिक्षणशाला पीटीएस में नवारक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आईटीआई और 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कटनी कलेक्टर ने अस्पतालों में पर्याप्त एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपील की है कि सांप काटने पर झाड़फूंक के बजाय अस्पतालों में इलाज कराएं। अशोकनगर में जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत उमरिया में आयोजित जन कल्याण शिविर में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया। और किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की मई 2026 की रैंकिंग में झाबुआ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5

प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली,
5: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान भाइयों और बहनों, राम राम, नमस्कार। आपकी तैयारी कैसे चल रही है खरीफ फसल के संबंध में? क्योंकि जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि बारिश जो है वो थोड़ा सा लेट होते जा रही है, ऐसी जो है आशंका भी थी, मौसम वैज्ञानिकों ने जो है ये आशंका भी जताई थी कि कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं और बहन हैं वो अपनी तैयारी में तो लगे ही होंगे। तो खरीफ की ये जो तैयारी है उसमें कई प्रकार के कृषि यंत्र और साथ ही साथ जब खेत की तैयारी करते हैं और साथ ही उसके बाद बुआई में जो कृषि यंत्र लगते हैं, तो इसके विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपक चौहान को, और आप हैं वैज्ञानिक कृषि अभियांत्री कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: सभी किसानों को नमस्कार और आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम के लिए। जैसे कि किसानों को अभी बोनी का समय चालू होने वाला है, किसान अपने खेत तैयार कर चुके हैं और किस प्रकार से हम आने वाली फसल को अच्छे से अच्छा हम उत्पादन ले, उसके लिए बोनी हमारी, बुआई हमारी सही तरीके से हो, सही विधि से हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज इसी विषय पे हम किसानों से चर्चा करेंगे।
0: जी, खरीफ की जो बुआई है इसमें कई प्रकार के कृषि यंत्र लगते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि खरीफ में हमारे कौन कौन सी फसल जो है शामिल है। इसके पहले जो है एक विशेषज्ञ हमारे बीच थे, सोयाबीन के विषय में उन्होंने काफी जानकारी दी थी, लेकिन देखा जाए तो जो शहडोल संभाग है, शहडोल जिला है, अनूपपुर उमरिया आसपास में जो भी है, ये छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खरीफ में अगर उसका अनुपात देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है धान की जो फसल है वही लगाई जाती है इस क्षेत्र में, और सोयाबीन का जो नंबर है वो उसके बाद आता है। उसके अलावा जो मूंग उड़द वगैरह भी जो है यहाँ पर फसलें हैं, तो इन फसलों के विषय में सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं।
1: खरीफ में जो शहडोल और आसपास के क्षेत्र में सब मुख्य हमारी धान लगती है, उसके बाद में फिर आता है सोयाबीन, आती है सोयाबीन है, फिर कोदो कुटकी भी एक जो जिसको हम बोलते हैं माने मिलेट्स जो बोलते हैं, श्री अन्न जो बोलते हैं उनको लगाते हैं, फिर आता है मूंग उड़द तिल, इन फसलों को हम लगाते हैं हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर। और इन्हीं के लिए हम बुवाई के लिए कौन कौन से यंत्र का उपयोग हम कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले धान की बात करेंगे कि धान हमारा किस प्रकार से लगाएं। आमतौर पर हमारे यहाँ के किसान भाई क्या करते हैं कि वो उसके लिए नर्सरी लगाते हैं, और नर्सरी लगाने के बाद खेत में नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद में जब नर्सरी तैयार हो जाती है लगभग 20 से 25 दिन की या 30 दिन की, जैसे सुविधा के अनुसार, पानी की सुविधा के अनुसार, उसके बाद में वो उसे हाथ से रोपाई करते हैं उसमें। तो अगर जिन किसानों को अगर जहाँ पे पानी नहीं भरने वाला खेत है, तो वहाँ पे हम एक जो मशीन है, हम नॉर्मल जो सीड ड्रिल की जो हम बात करते हैं, सीड ड्रिल एक यंत्र है, कृषि यंत्र है बुआई के लिए, उसके द्वारा हम धान की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। तो उसमें किसान भाई क्या करते हैं, जैसे हम अगर रबी की हम बात करते हैं कि जैसे गेहूं बोते हैं, तो बहुत सारे किसान सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई सीधे सीधे कर देते हैं, उसी प्रकार से इसी में ही हम जो धान की सीधी बुआई हम कर सकते हैं सीड ड्रिल के द्वारा। तो सीधी बुआई में दो प्रकार की विधियां हैं इसमें, कि एक तो है कि गीली बुआई और एक होता है सूखी बुआई। गीली बुआई में किसान भाई क्या करेंगे कि अगर उनके पास में सिंचाई की सुविधा है, जिन किसानों के पास में बड़े है जहाँ पे पानी नहीं भरता हो जिन खेतों में अभी, तो पानी आने के पहले ही, बरसात चालू होने के पहले, वहाँ पे गीली बुआई में हम एक बार पानी दे दें, हल्का सा नमी आ जाएगी खेत में, उसके बाद में फिर जब ऐसा देखे कि ट्रैक्टर के पहिए उसमें गड़े ना, उस तब फिर उसमें हम बुआई कर सकते हैं सीड ड्रिल के द्वारा, सीधे ही हम बुआई कर सकते हैं। तो उसमें फिर क्या है कि आपको डबल से पानी देने की जरूरत नहीं रहेगी और बीज का अंकुरण आ जाएगा उसमें। सीड ड्रिल का ये फायदा रहेगा उसमें कि उसमें बीज का एक खाना अलग बना रहता है और खाद का खाना अलग बना रहता है, तो बराबर उसमें लाइन से ही आपकी बुआई होगी और बीज भी आपका अंकुरण अच्छे से होगा उसमें। ये फिर रहता है सूखी बुआई के लिए। सूखी बुआई के लिए किसानों को ये देखना है कि आप अगर सूखा कहते हो तो उसमें अच्छे से कल्टीवेटर चला के और भुरभुरा कर ले, रोटावेटर चला ले, उसके बाद में फिर जब खेत तैयार हो जाए तो सूखी खेत में ही अब सीड ड्रिल में धान डाल के बुआई कर दे, उसके बाद में फिर एक बार पानी दे, पानी देने के बाद में फिर एक ये समस्या, हम जब हम यहाँ पे प्रदर्शन भी कराए, किसानों को बताए भी, किसानों के यहाँ से समस्या भी आती है धान की सीधी बुआई में कि खरपतवार बहुत ज्यादा होता है।
0: अच्छा।
1: तो खरपतवार को कम करने के लिए इसमें यह होता है कि हमको खरपतवार नाशी डालना पड़ता है। तो जैसे ही हमने बुआई करी और फिर हमने अगर पानी दिया, अगर खेत में नमी है, नमी नहीं रहेगी सूखी बुआई में, तो हमको पानी देना पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: पानी देने के बाद में हमको 72 घंटे के अंदर अंदर हमको खरपतवार नाशी, जो प्री एमर्ज, जो बीज अंकुरण के पूर्व वाला खरपतवार नाशी है, उसको
0: अच्छा।
1: छिड़कना पड़ेगा,
0: हाँ।
1: जिसका नाम है पेंडामिथिलिन।
0: अच्छा
1: ये खरपतवार नाशी आता है,
0: जी जी
1: वही लगभग 750 से 1000 ml का एक एकड़ के लिए आपको पर्याप्त रहता है।
0: बिल्कुल
1: ये उनको छिड़कना पड़ेगा। फिर आता है धान की ही, जो हम अगर हमको रोपा ही अगर लगाना है,
0: जी
1: ये
0: जी
1: होगा एक सीड ड्रिल का। दूसरा है जिसको रोपा ही अगर लगाना है, और फिर ये होता है कि मजदूर नहीं मिलते रोपा ही लगाने के, जब हमारा जो नर्सरी है तैयार हो गई है और फिर मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या है कि जो नर्सरी है लगभग 15 से 20 दिन या 21 दिन की हमको लगा देना चाहिए।
0: जी जी
1: ये हम बोलते हैं कि तब अच्छा अच्छा उसका जर्मिने अंकुरण आएगा, वो ज़्यादा ज़्यादा उसमें पैदावार निकलेगी। लेकिन जितनी लेट होगा उतनी पैदावार कम होगी। तो उसमें फिर आता है पेडी ट्रांसप्लांटर, जिसको हम पेडी ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। ये दो प्रकार से रहते हैं।
0: जी
1: ये इसमें एक होता है कि वॉकिंग टाइप पेडी ट्रांसप्लांटर और एक होता है राइडिंग टाइप।
0: अच्छा
1: दोनों, एक जिसमें हम वॉकिंग टाइप पेडी ट्रांसप्लांटर होता है, इसमें जो है जो भी आदमी रहेगा, चालक रहेगा, वो पीछे पीछे चलेगा,
0: जी
1: पैदल
0: जी
1: पैदल चलेगा इसमें।
0: इसीलिए वॉकिंग
1: हाँ
0: टाइप
1: हाँ
0: का है।
1: वो पैदल चलित, इसको बोलते हैं हिंदी में पैदल चलित राइस ट्रांसप्लांटर है। तो वो पीछे पीछे चलेगा और आपकी जो है, आप जो नर्सरी तैयार करेंगे तो वो फिर आगे आगे आप, या फिर आगे की तरफ लगी या पीछे की तरफ में उसकी फिर रोपाई होती जाएगी। फिर दूसरा आता है राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर आता है। तो
0: जी
1: राइडिंग टाइप जो ट्रांसप्लांटर है उसमें जो है जो भी चालक रहेगा वो उसके ऊपर बैठेगा, जैसे कि ट्रैक्टर चला रहा है या गाड़ी चला रहा है,
0: जी जी
1: उस प्रकार से रहेगा वो। तो उसमें फिर उसमें कि इसकी कार्य क्षमता थोड़ी ज़्यादा है राइडिंग टाइप की, क्योंकि उसमें बैठ के चला रहा है, तो वो समझो गाड़ी चला रहा है उस प्रकार से उसमें चलेगा ये।
0: जी जी
1: वॉकिंग टाइप ट्रांसप्लांटर जो है, जो पैदल चलित वाला है, इसकी जो दक्षता है
0: जी
1: वो
0: जी
1: 1 एकड़ लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपकी रोपाई कर देगा।
0: अच्छा
1: ये है वो जो राइडिंग टाइप जिसपे बैठ कर चलाते हैं,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: लगभग 30 से 35 मिनट या 40 मिनट में आपकी रोपाई कर देगा।
0: जी
1: ये रहता है वो कुशलता के आधार पे, कि जैसे जैसे अगर जो हमारा ड्राइवर है कुशल हो जाएगा तो वो अच्छे से फिर उतनी जल्दी फिर उसकी रोपाई कर पाएगा।
0: जी
1: ये तो यानी कि जहाँ पे हम 1 एकड़ में हम जो हाथ से रोपाई की जो बात करते हैं, तो लगभग 8, 10 से 12 मजदूर भी लगते हैं और
0: जी
1: दिन भर लग जाता है।
0: जी जी
1: वहीं पर हम जो राइडिंग टाइप या वॉकिंग टाइप की जो बोलें, तो 40-30 मिनट में आपका राइडिंग टाइप में हो जाएगा, वॉकिंग टाइप में आपका 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो आपका क्या है कि आपकी जो, अगर खेत जल्दी आपकी रोपाई हो गई है, बरसात जो आने की समस्या है, गीले होने की समस्या है, वो नहीं रहेगी, और
0: जी
1: जो खेत में घुस के जो चला लगाना है, अगर मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, ये आपका फायदा हो जाएगा। अब इसमें जो है कि ट्रांसप्लांटर में एक मुख्य बात ये है कि इसमें नर्सरी कैसे तैयार करना है। हम जो वो किसान आमतौर पर करता है, वो खेत में ही अपने खेत में कोने में अपने अच्छे से मिट्टी तैयार करता है और वहाँ पे उसकी बीज के लिए, बीज नर्सरी के लिए लगाता है वहाँ पे।
0: जी
1: लेकिन इसमें उस प्रकार से नहीं, उसमें फिर आपको चटाई नुमा मेट टाइप नर्सरी आपको लगानी पड़ेगी,
0: अच्छा
1: तैयार करनी पड़ेगी। इसमें जितनी भी कंपनियां हैं उनका अलग अलग उसका साइज का रहता है।
0: जी
1: तो अगर जिस कंपनी का ले रहे हैं उस अनुसार के उसकी फ्रेम रहती है, या तो उसकी ट्रे आती है, ट्रे नहीं अगर आप लेना चाहें तो आप अपना स्वयं से ही उसका जिस साइज का उसे फ्रेम वेल्डिंग के से बना सकते हैं, बनवा
0: जी
1: सकते हैं वेल्डिंग वाला,
0: जी
1: जो कि
0: जी
1: हम आजकल यहाँ पे किसानों के यहाँ पे प्रदर्शन भी करवा रहे हैं।
0: अच्छा
1: तो वो लोहे की फ्रेम आपकी परमानेंट बन गई, और उस फ्रेम में जो उस साइज का वो लगभग 1 मीटर का, 30 सेंटीमीटर का आपका लाइन टू लाइन का वो रहता है, तो
0: जी
1: वो फ्रेम बनती है। और लंबाई में उसकी जो चौड़ाई आपका 1-30 सेंटीमीटर का हो गया, चौड़ाई में लंबाई में आपका वो कितना भी आप ले सकते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ेगा।
0: अच्छा
1: अगर क्योंकि ज़्यादा लंबी अगर चटाई बन गई तो वो फिर टूटेगी, फिर आप उठा के नहीं ले जा सकते हो, ये दिक्कत रहती है। तो उसको तैयार करने के लिए आपको फिर मिट्टी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सूखी मिट्टी की। सूखी मिट्टी लेने के लिए जो है, सबसे पहले काली मिट्टी की जो कि अच्छी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, वो मिट्टी आपको लगभग 50% लेनी है, फिर उसके बाद में फिर 30% आपका रेत रेत आ जाए, और उसके बाद में 20% आपकी उसमें जो है जैविक जो खाद है, जो हम गोबर खाद बोलते हैं, अच्छी छनी हुई या केचुआ खाद अगर आपके पास में तो वो ले सकते हो,
0: जी
1: इसका मिश्रण बना के अच्छे से बना के फिर उसमें फिर नर्सरी के लिए हम उसमें उस मिट्टी का उपयोग करते हैं। जब अच्छे से मिश्रण तैयार हो गया फिर उस फ्रेम में पहले ही मिट्टी डालेंगे,
0: जी जी
1: और उस मिट्टी डालने के बाद में फिर या तो हाथ से हम फिर उस पर मिट्टी डालने के बाद में हाथ से हम बीज डालें, या
0: अच्छा
1: फिर आ गया है आजकल सीडर भी आ गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: सीडर भी है इसमें, एक छोटा
0: जी
1: सीडर रहता है जो फ्रेम पे चलता है सीधे, फिर उसमें कि ये सीड ड्रिल जैसा ही एक छोटा सा सीडर रहता है
0: जी
1: जिसमें
0: जी
1: हमने अपना बीज डाल दिया और फिर उस फ्रेम पे हम चलाएंगे उस सीडर को, तो क्या है कि उसमें बराबर ही आपका बीज गिरता है पूरे चटाई में, पूरे मिट्टी में, तो
0: जी
1: एक
0: जी
1: परत अच्छे से बन जाती है।
0: बिल्कुल
1: फिर वो सीडर से हम जब बीज डाल दिए, फिर बीज डालने के बाद में फिर से उस सीडर में फिर मिट्टी भरेंगे हम, फिर उसमें मिट्टी का एक परत उसमें चढ़ाएंगे, या तो सीडर से डाले या फिर हाथ से ही उसमें परत चढ़ा सकते हैं,
0: जी
1: ये चीज़ हो जाएगी। तो दोनों इसमें कि आप ट्रांसप्लांटर के लिए मेट टाइप नर्सरी तैयार करना, उससे सीडर का एक छोटा सा यंत्र है उसका आप उपयोग कर सकते हो, तो वो आपका आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद में फिर उसी वक्त आपको वो फ्रेम नहीं उठानी है,
0: जी
1: फ्रेम उठाने के लिए आप भी उसमें पानी डालेंगे अच्छे से, और लगभग 10 से 15 मिनट तक रुके रहेंगे, क्योंकि क्या कि जब तक वो मिट्टी गीली होगी थोड़ी सी सूखेगी तो एक फ्रेम में उसमें जो जैसे हम मिठाई काटते हैं उस
0: अच्छा
1: प्रकार का उसमें रहता है,
0: हाँ
1: मिठाई की जो बनती है तो उसमें फिर कटाई होती है, उसकी छोटे छोटे पीस बनते
0: पीस
1: हैं,
0: में
1: उसी
0: जी
1: प्रकार से पीस बनने के लिए जब हम फ्रेम उठाएंगे तो उसी प्रकार से वो पीस बन जाएंगे वहाँ पे। फिर उसको हम डेली पानी देंगे, पानी
0: जी
1: देना ज़रूरी है, सिंचाई करना ज़रूरी है हल्का सा उसमें डेली, आप झारे से जो झारा आता है हम उसमें तो उससे
0: जी
1: सिंचाई करेंगे, और हम जो लगभग 15 से 20 दिन का जो आपको नर्सरी तैयार हो जाएगी तब हम उसको फिर हम रोपाई के लिए ले जाएंगे, रोपाई के लिए हमारा पेडी ट्रांसप्लांटर में से रोपाई के लिए हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी, ये
0: जी
1: रहेगा। आपको ये इसमें कि ज़्यादा दिन का नहीं करना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है कि हमको 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का, नहीं तो क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांटर में फिर आपकी नर्सरी का जो पौधा है वो फंसेगा इसमें, ये
0: अच्छा
1: ध्यान देना है आपको कि लगभग
0: हाँ
1: आपका 20 से ज़्यादा 25 दिन का हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, पौधा बड़ा होगा तो फंसेगा। ये भी ध्यान देना है उसमें कि एकदम काली मिट्टी ना हो, काली
0: अच्छा
1: मिट्टी होगी तो
0: फटने
1: उसमें
0: लगती है।
1: वो जो है कि किसान जब वो रोल बनाएंगे उसका
0: अच्छा अच्छा
1: मेट का नर्सरी का तो वो
0: हाँ
1: टूटेगी, वो टूट
0: अच्छा
1: जाएगी उसमें,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: बहुत काली मिट्टी का ये है कि बहुत वजन रहता है उसमें,
0: हाँ
1: बहुत भारी रहती है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो उसकी जो फिंगर रहती है जहाँ से वो पकड़ता है
0: वो टूट
1: ट्रांसप्लांटर
0: जाती है।
1: का टूटने वो उसमें चिपक जाता है वो।
0: अच्छा हाँ
1: और ये भी ध्यान देना है कि आपकी अच्छी छनी मिट्टी हो, छनी मिट्टी नहीं, अगर पत्थर
0: जी
1: आएंगे तो फिंगर टूट जाएगी,
0: अच्छा
1: तो एकदम
0: अच्छा
1: छनी हुई जैसे हम रेत को छानते हैं उस छनने से हमको छानना है पूरी मिट्टी भी रेत भी, और जो हम जो केचुआ खाद ले रहे हैं गोबर खाद ले रहे हैं इसको अच्छे से छनाई करने के बाद में बिना पत्थर वाली हमारी मिट्टी होना चाहिए, ये
0: बिल्कुल
1: किसानों को ध्यान में देना पड़ेगा। तो
0: जी
1: दो प्रकार के हमारे जो है यंत्र धान की जो नर्सरी के द्वारा लगाने वाले है उसमें राइस ट्रांसप्लांटर दोनों प्रकार के है, राइडिंग टाइप का और वॉकिंग टाइप का। ये
0: जी
1: लगभग इनकी अनुमानित लागत अगर हम बोलें तो किसान भाई अगर लेना चाहेंगे जो वॉकिंग टाइप जो पैदल चलित वाला है
0: जी
1: लगभग 3 लाख तक के अंदर अंदर आ जाता है,
0: अच्छा
1: जो किसान भाई अगर लेना चाहे जिनकी ज़्यादा ज़मीन है या फिर ये किराए पे भी चला सकते हैं,
0: जी
1: किराए पे चलाने के लिए क्योंकि बहुत सारे किसानों को लेबर नहीं मिल रहे हैं, तो आप नर्सरी तैयार करके उनके यहाँ पे लगाइए,
0: बिल्कुल
1: दूसरों के यहाँ जो पहले से प्री ऑर्डर ले लीजिए आप और उसके बाद में लगाइए, तो वो एक व्यवसाय के रूप में भी अपना काम कर सकते हैं ये। फिर इसके बाद में जो दूसरी मुख्य फसलें हैं अब उनकी हम बात करेंगे कि धान की हमारी एक हो गया धान की सीधी बुवाई
0: जी
1: और राइस ट्रांसप्लांटर की जो मशीनें हैं।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ माटी भी था ना और लोग पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सभी डाले
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चाखा और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: जी अच्छा, उसके पहले मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो दो प्रकार के आपने बताए थे, एक तो वॉकिंग टाइप और एक जो है राइडिंग टाइप, तो इसमें दोनों में फ्यूल लगता है, मतलब जब हाँ, चलाया जाता है हाँ, दोनों में फ्यूल लगता ही होगा, तो उसी में मैं जानना चाह रहा था कि क्या वॉकिंग टाइप मतलब कि उसको लेके चलना बस है कि उसमें भी फ्यूल वगैरह लगता है?
1: दोनों में ईंधन लगता है, पेट्रोल चलित रहता है जी, जी। थोड़ा कोई अब अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रकार का बनाती है इसमें, कि कोई स्टार्टिंग में चालू होने के लिए पेट्रोल उसमें रहता है, वैसे ज्यादातर जो कंपनियां वो पेट्रोल चलित वाला ही बनाती है इसमें
0: जी।
1: ये तो इसमें जो ईंधन लगता है, जो इसकी खपत है इसके बारे में बताता हूँ हाँ। कि ये लगभग 1 से 1.5 लीटर वो अगर है 1 घंटे का, बहुत हो गया, ज्यादा
0: अच्छा।
1: से ज्यादा
0: अच्छा।
1: वो चलाने वाले की निर्भर है हाँ। नहीं तो वो है कि वो जो है कि 900 ml जो हम बोलते हैं कि 1 लीटर से कम में भी चला सकता है वो
0: अच्छा।
1: वो उसकी दक्षता पे है। क्या है कि हम जैसे पहले अब स्टार्टिंग में जब शुरुआत में हम मोटरसाइकिल भी लेते हैं तो हम ज्यादा एक्सीलेटर खींचते हैं, ये चीज होती है, उसी प्रकार से उसकी दक्षता पे भी है कि आप 1 लीटर के अंदर अंदर में भी उसका उपयोग करके एकड़ की आप बुआई कर सकते हो, रोपाई कर सकते हो उसमें, ये रहेगा इसमें।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अगले जो अन्य फसल है उनके विषय।
1: जो अन्य फसलें हैं जैसे मुख्य है सोयाबीन की है, मूंग है, उड़द है, इन सभी में है कि हमको जो किसानों को है कि सीड ड्रिल जो नॉर्मल सीड ड्रिल है इससे बुआई करनी चाहिए। अगर हम जैसे अभी हम सुन भी रहे हैं कि मौसम का जो परिवर्तन है वो ठीक से नहीं है, कि पानी ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो उसमें मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो विधि है उसको बदलिए। बदलने में ये है कि या तो आप कूड़ नाली जो रिज फरो बोलते हैं मेड़ नाली पद्धति, उससे हम बुआई करें, तो मेड़ नाली पद्धति के लिए हम जो नॉर्मल सीड ड्रिल है उसमें ही थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जिससे उसमें मेड़ नाली बन जाती है। उसमें क्या है कि जिन भी किसान भाइयों के पास में नॉर्मल सीड ड्रिल है उसमें पीछे की तरफ वाले जो टाइन्स जो रहते हैं पीछे की तरफ जहाँ से आपकी बुआई हो रही है उनमें आपको फिर जो है कि बोलते हैं डक फुट टाइप, उसमें टाइन जो हमारा जो जमीन को खोदने वाला रहता है जैसे बदक के पंजे रहते हैं उस प्रकार का उसमें टाइन लगाना पड़ता है। नॉर्मल वो मिल जाता है दुकानों पर, हार्डवेयर या जहाँ पे आप ये जो कृषि यंत्र रहते हैं उनकी दुकानों पर मिल जाता है। तो क्या कि पीछे की तरफ जैसे 5 आपकी जो है लाइन आपकी जो है मेड़ बनाएगी और 4 आपकी इसमें फिर आपकी बुआई करेगी इसमें
0: अच्छा।
1: ये हो जाएगा इसमें तो ये है कि आपको कि जो बुआई होगी आपकी मेड़ पे होगी और साइड में आपकी नाली बनेगी। तो ये है कि अगर ज्यादा पानी गिरता है तो वो पानी उन नालियों से चले जाएगा और आपकी जो फसल है वो बची रहेगी। सोयाबीन के लिए, मूंग के लिए, उड़द के लिए जो दलहनी फसलें हैं इनके लिए मुख्य है कि अगर पानी भराव की स्थिति आती है तो आपकी फसल खराब हो जाती है
0: अच्छा।
1: और मुख्य ये है कि जो मेड़ नाली पद्धति जो ये है इनको काली जमीन है जहाँ पे काली जमीन है जिन किसानों के यहाँ पे, तो उनमें अगर जल भराव की स्थिति ये पानी बहुत देर तक रुकता है, जल भराव की स्थिति बनती है तो भी आपकी फसल खराब हो जाती है। तो उसमें आपकी मेड़ नाली पद्धति से एक जो है आप बुआई कर सकते हो। दूसरी इसी में आ गया है कि सोयाबीन के लिए ही और इन के लिए कि आप मेड़ नाली है। फिर दूसरा जो आ जाता है कि रिज बेड विधि जो है, यानी कि मेड़ के का जो एक बेड बनता है, एक बन रहा है उसके बाद में फिर आपकी मेड़ नाली बन रही है, उस विधि से भी आप बुआई कर सकते हो। इसमें है कि जो बेड बन रहा है इस पे आपकी 2 लाइन आएगी
0: जी।
1: 2 लाइन में बुआई होगी, उसके बाद में फिर नाली आएगी, फिर अगली 2 लाइन में फिर बुआई होगी, नाली आपकी बुआई होगी और फिर आपकी नाली बनेगी। तो उसमें कि उसमें भी आपका जो है कि जल भराव की स्थिति में आपका फसल को नुकसान नहीं होगा। फिर तीसरा जो आ जाता है कि ब्रॉड बेड फरो जो है कि चौड़ी मेड़ के ऊपर में आपकी चौड़ी जो बेड बन रहा है उसके ऊपर में आपकी बुआई होगी। इसमें ब्रॉड बेड फरो में है कि आपकी 5 कतार जो है आपकी होगी और राइट साइड में फिर आपके 5 कतार के बाद में फिर नाली बन जाएगी
0: अच्छा।
1: ये यह होगा। फिर अगली फिर पांच
0: का बेड में जो है नालियों की संख्या कम होती है,
1: हाँ
0: क्यारियों की संख्या मतलब जिसमें बेड में जो
1: कतारों की संख्या ज्यादा रहेगी ये रहेगा उसमें। तो ये तीनों जो है कि रिज फरो जो हम बोल रहे हैं, रिज फरो के लिए भी आप नॉर्मल सीडर में आपकी ऐसी व्यवस्था कर सकते हो। फिर ये है कि जो हम रिज बेड की जो बात कर रहे थे, अगर आपके पास नॉर्मल सीड्रिल है उसमें भी आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हो कि दो लाइन के बाद में आप ऐसा उसका जो नाली बनाने वाला जो आता है वो लगा सकते हो, या फिर इसकी सीड्रिल भी आती है।
0: अच्छा।
1: रिज बेड सीड्रिल आती है और ब्रॉड बेड के लिए भी सीड्रिल अलग से आती है। अगर अलग से नहीं लेना है तो आप जो आपकी नॉर्मल सीड्रिल है आप उसी में इसका व्यवस्था एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। ये भी हो जाता है कि जो नाली बनाने वाले जो वो है वाइट साइड में लगवाने के लिए बस वेल्डिंग करवाना है, उसमें व्यवस्था करना है। जब आपका बेड वाला काम नहीं करना है तो आप उसके एडजस्टमेंट को खोल लीजिए, रख लीजिए। और जब आपको जैसे फिर आएगा रवि वाला तो उसमें लगे नहीं रहने देंगे तो हम निकाल के रख लेंगे। ये चीज़ भी आप कम पैसे में आपकी व्यवस्था इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगर कोदो कुटकी की हम बात करते हैं, कोदो कुटकी भी मुख्य है इसमें, श्री अन्न भी है। तो श्री अन्न के लिए हम जो नॉर्मल सीड ड्रिल है इसमें तो हम डायरेक्ट हम बुआई नहीं कर सकते क्योंकि इसका बहुत छोटा बीज रहता है। तिल का भी जैसे बहुत छोटा बीज रहता है, जो छोटे अनाजों के लिए भी सीड ड्रिल छोटी छोटी आती है। जो श्री अन्न के लिए कोदो कुटकी के लिए दूसरी सीड ड्रिल आती है, वैसे तो अभी यहाँ नहीं है लेकिन बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी बना रही है। एक जो है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था है जो ICR का है भोपाल में, वहाँ पे भी बहुत सारी मशीनें बनी है, सीड ड्रिल बनी है इसकी हम। लेकिन वहाँ पे हमको पहले से ही हमको ऑर्डर देना पड़ता है जो भी किसान भाई को लेना है, और वहाँ से भी हम कोदो कुटकी की बुआई के लिए सीड ड्रिल हम मंगवा सकते हैं। या फिर एक ये है कि हम देसी जुगाड़, अगर जुगाड़ की जो बात करते हैं कि जो अगर हमारा बीज है, हमको 1 किलो बीज में हमको 4 से 5 किलो हमको रेत लेना पड़ेगी। रेत ना लें, अगर रेत में क्या होता है कि नमी जल्दी सोख लेता है। तो ये है कि हम जो केचुआ खाद है, केचुआ खाद 4 से 5, 1 किलो हमारा बीज 5 किलो हमारा केचुआ खाद अच्छा छना हुआ रहे।

0: वो उसमें मिला के भी हम जो नॉर्मल सीड ड्रिल है उससे भी बुआई हम कर सकते हैं, जो जितने भी छोटे वाले हमारे बीज वाले आना वो फसलें हैं उनकी हम बुआई कर सकते हैं। ये हमारी किसान भाई अगर इन विधियों से इन यंत्रों से हम बुआई करेंगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाएंगे।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। इसमें आपने बताया है कि जो खरीफ की जो बुआई है उसमें लगने वाले जो कृषि यंत्र हैं उसमें मुख्य रूप से जो है सीड ड्रिल, पैडी ट्रांसप्लांटर और साथ ही जो हमारी खरीफ की जो अन्य फसलें हैं सोयाबीन, मूंग, उड़द और कोदो कुटकी, इसमें जो है किस प्रकार से बीज की बुआई की जा सकती है, इन सब के विषय में आपने चर्चा की हुई है। इसमें मेरा एक प्रश्न ये है कि जो इसमें इसको जो प्राप्त करने के लिए आपने जो संस्थान बताए हुए हैं, अभी यहाँ पर अगर शहडोल में अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से कौन कौन से कृषि यंत्र उपलब्ध हैं और जिनकी सहायता के साथ, जैसे आपने कहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो मिल के भी जो है कर सकते हैं, एक अगर कृषि यंत्र का उपयोग नहीं करना है साथ में सामूहिक रूप से जो है करना है तो कौन से कृषि यंत्र जो है ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पर और जो उपलब्ध भी हैं?
0: देखिए, कृषि यंत्र उपलब्ध प्राइवेट जो दुकानें हैं
1: जी,
0: जो वहाँ हैं, अब प्राइवेट दुकानों का तो यहाँ पे हम नाम नहीं लेंगे,
1: हाँ
0: लेकिन जो मेरा ये किसानों को ये कहना है
1: जी
0: कि जो दुकान या जो दुकानदार से आपका अगर, क्योंकि मशीन है और ऐसी मशीन हम बाहर से अगर बुलवाएंगे तो कुछ टूट फूट होती है या उसका जो कुछ उसका सुधार होना है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये भी किसान भाई ध्यान रखे कि उसका सुधार होने के लिए ज़्यादा समय, क्योंकि बुआई के लिए और किसी भी चीज़ के लिए हम खेती रुकती नहीं है, तो उसका सही समय पे जल्दी से जल्दी हमको कहाँ से मिल सकता है अगर हमने बहुत दूर से बुलवा लिया मशीनों को, या
1: जी
0: उसका सुधारने वाला नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी ऐसी जगह हम जहाँ चुने कि हमारा जो सुधारने के लिए या उसका मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए पास ही से हमारा आ जाए। फिर ये है कि जो मशीनों की जो हम बात करते हैं, तो एक मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई हुई है
1: जी
0: जिसको हम कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं।
1: अच्छा
0: कस्टम हायरिंग सेंटर में बहुत सारे किसानों ने लिया भी है और किसानों के जहाँ पे, जिन किसानों के यहाँ पे होगा तो उनके आसपास के लोग जानते भी होंगे कि इनके यहाँ पे कस्टम हायरिंग के थ्रू मशीनें भी ली है, तो
1: जी
0: वहाँ से आपकी वो उनके पास में सीड ड्रिल होगी ही होगी, सभी ने सीड ड्रिल, क्योंकि ट्रैक्टर है उसमें
1: जी
0: सीड ड्रिल है,
1: हाँ
0: उसके
1: हाँ
0: बाद में फिर कल्टीवेटर रहता है,
1: जी जी
0: MB प्लाऊ रहता है जो कि लेना जरूरी ही है, उसके बाद में फिर जो अन्य कृषि यंत्र है जिसमें आपका रिज बेड फरो, रिज बेड वाला है, ब्रॉड बेड फरो है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार है, तो बहुत सारे जो कस्टम हायरिंग सेंटर वाले हैं उन्होंने लिया भी है, तो वहाँ से आप किराए पे सीड ड्रिल ले सकते हो, उनसे भी उनसे पूछ लीजिए और कि उनके पास में रिज बेड बनाने वाली मशीन है या नहीं है, अगर होगी तो आप पहले से उनके पास में बुकिंग कर लो कि मेरे को मेरे यहाँ पे बुआई करवानी है, रिज बेड वाली है, ब्रॉड बेड वाली है बहुत सारा जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनके वहाँ पे भी है, या तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हो कि आप को एक लिस्ट हम दे देंगे, या
1: जी
0: फिर आप कृषि अभियांत्रिकी जो विभाग है नरसराम है वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हो, तो वो भी आपको कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे, उनके संचालक वाले कौन है उनका नंबर भी मिल जाएगा, तो आप
1: जी
0: उनसे सीधे संपर्क करके आप किराए पे वहां से ले सकते हो, ये चीज हो जाएगी।
2: आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

0: किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
1: तो किसान भाइयों और बहनों, आपने जान लिया है कि जो खरीफ की जो बुआई में लगने वाले जो कृषि यंत्र हैं उनके संबंध में जो ये जानकारी है आपको अभी डॉक्टर साहब ने बताया ही है। तो इन जानकारियों का आप लाभ उठाइए और ये जो खरीफ का जो समय आ चुका है इसमें आप अपनी तैयारी में विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्यादा विलंब करने से जो है कभी कभी हम जो है काफी लेट हो जाते हैं और हमारी फसल फिर जो लेट होने के बाद अगली जो फसल है वो भी प्रभावित हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आज ये जो जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों और बहनों को दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपका भी और सभी किसान भाइयों का भी कि आप अच्छे से अच्छे खेती करें और अच्छे से अच्छे उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद।

किसान भाइयों और बहनों, किसान वाणी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।
2: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता। देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती। हालांकि मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों और विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों को दिए गए पुरस्कारों को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता। ये सम्मान कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
1: इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत, कला के क्षेत्र में पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज जैसे जाने माने नाम सम्मिलित हैं। इसके अलावा चिकित्सा, समाज सेवा, कला और लोक मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई अन्य हस्तियों को भी यह सम्मान दिया गया। इनमें डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयडू, भगत सिंह कोश्यारी, के आर पलानी स्वामी, एस के एम मैलानंदन, शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव संकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
3: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
4: गांव ईरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर के हूँ। तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे। तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल की और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है।
3: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
4: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
1: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रविलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नोवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रही। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2022 में बंगभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
5: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
6: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो अठवा तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है।
5: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
6: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
5: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
6: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप में एडुकेशन कितना टूट जाएगी, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आए हैं।
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, कुपोषण से लड़ने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
7: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
8: बुजबाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय। हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबूझमाड़ में गए थे।
7: महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबूझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रही हैं, वहाँ आपने क्या देखा?
9: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रखते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
1: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
10: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
11: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
10: इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
11: जो हमारी परंपरागत किस्में थी अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थी और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हो, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
10: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
11: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
1: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 ICC खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत। पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
0: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
12: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कुदरत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, मजरू सुल्तान परी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अब सुनिए हर जाई फिल्म का यह नगमा। निदा फाजली के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने।

आप तो ऐसे ना थे। लीजिए सुनिए इस फिल्म से हेमलता को, निदा फाजली का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

मांग भरो सजना, डीजे सुनियस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

0: ले चलेंगे
1: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:42 होने को है, वक्त है अंतराल का। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
5: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
6: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
3: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
7: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
3: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
7: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
7: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
3: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
8: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेस। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
3: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 की गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at second civil investiture ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South, and contribute to a safer, more secure, and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Deva Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch, who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
10: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week ending 2nd July. This means that our kharif crops could be affected. We have been preparing for such situations for quite some time. An assessment has also been carried out to determine how many districts may be affected. Based on the current projections, around 315 districts are likely to experience deficient rainfall.
9: Mr. Chauhan said that states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oilseeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions. He said scientific protocols, timely crop planning and district-level preparedness were being strengthened in coordination with the states. Mr. Chauhan added that Krishi Vigyan Kendra, AgroMet units and other advisory channels are being used to ensure that farmers receive timely guidance. The International Center for Ocean Information Services, or INCOIS, has begun issuing specialized bulletins on the potential impacts of the ongoing El Nino event on maritime sectors. The first bulletin was released by Shivela Member of Parliament, Konda Vishweshwar Reddy, at an event in Hyderabad. The bulletin states that the El Nino event is steadily developing and is expected to peak during winters between November 2026 and January 2027. Sea surface temperatures in the Indian Ocean are projected to remain above normal till May 2027. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singhal Kayagnik are among the decorated recipients. A report.
11: This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Padma Bhushan was given to 7 persons, including former tennis player Vijay Amrit Raj, actor Mammootty and playback singer Alka Yagnik in today's ceremony. Politician Shibu Soren was awarded the Padma Bhushan posthumously. 57 persons received the Padma Shri Award, including cricketer Rohit Sharma, actor R. Madhavan and former Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati. Actor Satish Shah was given the Padma Shri posthumously. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah were among those who were present on the occasion. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
9: The National Testing Agency, or NTA, today announced the results of Common University Entrance Test, CUET 2026, for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, over 11 lakh candidates appeared for the examination this year. A three-member special investigation team, or SIT, probing the alleged anomalies in donations and offerings at the Ayodhya Ram Mandir, has submitted its initial probe report today. The report was submitted to Additional Chief Secretary Home, Sanjay Prasad, by SIT head Vijay Vishwas Pant, who is Commissioner of Lucknow. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The Ministry of External Affairs today confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
12: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I'm told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
9: Responding to the comments made by Pakistani Defense Minister Khwaja Asif on the situation in Pakistan-occupied Kashmir, the spokesperson said such remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
12: Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
9: Mr. Jaiswal said that since the signing of MOU between the U.S. and Iran on the 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. He hoped that the remaining India-flagged vessels would also be able to cross the strait soon. The Tamil Nadu government has set up a helpline to assist people affected by the fire tragedy in Qatar. Chief Minister C. Joseph Vijay today announced an ex-gratia of 10 lakh rupees each to the families of those who lost their lives in the incident. He said, the state government is taking steps to bring back the mortal remains of the three victims in coordination with the Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in Qatar. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and the Prosperity Party on their decisive victory in the Ethiopian parliamentary elections. In a social media post, Mr. Modi said, India greatly cherishes its historic, multifaceted and deep-rooted ties with Ethiopia. Mr. Modi also reaffirmed his commitment to deepening the bonds of friendship between the people of India and Ethiopia. The Supreme Court today stayed the Delhi High Court order directing premature release of a lifetime convict in the 1993 Kolkata Bow Bazaar blast case. A bench comprising Justices P.K. Mishra and Sanjeev Sachdeva gave the interim relief on a plea filed by the West Bengal government challenging the 5th of June order of the High Court directing forthwith release of the 77-year-old convict Mohammad Rashid Khan. In Gujarat, Aam Aadmi Party MLA Chaitar Vasava may lose his assembly membership following his conviction in an assault and extortion case. Gujarat Legislative Assembly Deputy Speaker Purnesh Modi said that a person sentenced to 2 years of imprisonment cannot legally continue in office and is also barred from contesting elections for 6 years. Chaitar Vasava, his wife Shakuntala Vasava and 8 others were recently convicted by the Rajpipla Sessions Court in connection with a 2023 case involving the assault of Forest Department officials, extortion and offences under the Arms Act. The India Meteorological Department or IMD has issued an orange alert for thunder squall activity with wind speeds likely to reach 60 to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Delhi NCR today witnessed a sudden spell of intense Pradesh till tomorrow. Delhi NCR today witnessed a sudden as heavy rainfall, dust storms and strong winds swept across the region. Heavy rainfall conditions are likely over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Orissa, Telangana, some Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 2 to 3 days. Meanwhile, IMD said heat wave conditions are likely to persist over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha during the next 2 to 3 days. In hockey, India defeated Pakistan 4-3 in the thrilling FIH Men's Pro League 2025-26 clash in London a short while ago. Pakistan took a shock lead against the run of play in the first quarter as Ahmed Nadeem scored after a penalty corner. After squandering a number of penalty corners, India finally equalized in the second quarter, courtesy Abhishek Nain's goal. Neelkant Sharma scored soon after to give India the lead. Sukhjeet Singh added India's third goal with a superb strike. Rajinder Singh seals the win with a brilliant drag flick from a penalty corner in the fourth quarter. Shakil Moeen and Abu Mahmood scored the other two goals for Pakistan. In the FIFA World Cup, Portugal will face Uzbekistan in a Group K fixture at Houston in US, with Cristiano Ronaldo's side aiming to bounce back after being held to a draw in their opening match. The match will begin at 10:30 p.m. Indian time. In Group L, England will take on Ghana in a highly anticipated clash in Boston at 1:30 a.m. India finished another successful day at the ISSF Junior World Championship, with the country's shooters adding 3 more medals, including 2 silver and 1 bronze to their tally in Zoll, Germany. Shiva Narwal won the silver in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Yupratap Singh Rathor claimed the bronze in the same event, ensuring a double podium finish for India. India also secured a silver in the men's 10-meter air pistol junior team event. With these 3 medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met U.S. Trade Representative Jamie Sangria and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
13: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashwani News.
14: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.

0: Mann kann.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
3: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केट प्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रहा। DGSND एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
2: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और एक पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
3: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं
2: जी,
3: तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
2: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जैम पोर्टल पर तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जैम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
3: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जैम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहाँ पे बताई गई है जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, आपका GSTN है उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं। मतलब आपको जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह के अपॉर्चुनिटी है, तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं, तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
2: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जैम की क्या भूमिका है और छोटे व्यवसायी, हम MSME की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
3: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कंप्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है, और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव है।
2: जी, तो जो जेम है एमएसएमई के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एससी एसटी उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
3: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है। तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है। एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण, उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें तो महिला

0: मोनो जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही हैं। जो स्टार्टअप हैं, जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
1: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी ही किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
0: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली MCD के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
0: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
1: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जन सेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
0: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मिहिर जी, तो जेम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही। ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस, जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AI ML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जैम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जैम क्या अवसर देता है?
0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जैम की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हम, हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे
1: जी।
0: और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट
1: जी,
0: उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको पढ़ाने में रहेगा।
1: बिल्कुल। और अंत में ये जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जैम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है। और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जैम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोता हूँ, डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

कभी रोक लेती है वो राह में, कभी रूठ जाती है वो चाह में, कहीं पे वो बरखा कहीं पे बहार, सुनो मेहरबानों ये किस्सा है यार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

0: संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है और इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मोस जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।